इन शब्दों का अर्थ है, यानी नारायण, हरि और ओम, इन तीन शब्दों की रचना किस तरह से ऋषि लोगों ने की है। ये वेद सिद्धांत की अलापचारी है, जो कि ऋषि लोग जो अलाप करके विलीन हो जाते थे, समाधि लगाते थे, योग, ये योग संगीत है। ते ते रे ने रि नाय रे ने रे नाय रे ने रे नाय रे ने रे, नोई रस इसमें प्रदान होते हैं, सिंगार रस, भक्ति रस, करुणा रस, वीर रस, शांत रस, ये नोई रस इसके अंदर आते हैं।

इसी अराबचारी के आधार पर तमाम इंस्ट्रूमेंट का विकास हुआ, वीणा वगैरह, मृदंग, तानपुरा, सितार, नाच, इन्हीं शब्दों के आधार के ऊपर जो है पूरा वर्णन हुआ है।